है जानी, तुमने भी प्यार किया है, ए आशा है कि आप भी प्यार किया होगा और आगे में ही करते रहेंगे। कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। एक बार फिर हमेशा कहूंगी कि आपको स्वागत है।

यहाँ से आपके लिए सुनेंगे एक बार फिर, नाना एक बार फिर, हाँ सुनेंगे हम किशोर दा जी की आवाज में, लता जी की आवाज में साथ दे रहे हैं इस गीत में मोहम्मद रफी जी और खास तौर पे मुकेश जी। ये चारों मिलकर हमको क्या सुनाने वाले हैं, जरा हम सुने तो।

प्यार क्या करे, किशोर लता जी, मोहम्मद रफी जी और साथ दे रहे थे मुकेश जी। जी हाँ, आपने सुने फिल्म का नाम अमर अमर अकबर एंथनी। और कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।

आशा भोसले जी के आवाज़ में सुने हम फिल्म सुहाग से हमने निकाल दी है। हाँ, सुहाग फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन भी अपना रोल अदा की है।

और ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है फिल्म दोस्ताना से, किशोर दा और आशा भोसले जी की आवाज में। कि दिल लगी ने दी हवा और थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा प्यार उठा। कहते हैं कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है कि आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती। कहते हैं कि उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।

कि दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते जैसे आपके हो मेरे, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से रोज होता है।

0: काहे पैसे पे इतने गरूर करते हो, फिल्म का नाम लवारिस उसी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, फाहुन रेडियो से आप जुड़े हैं, आप और मैं यहाँ से आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीत चुनकर और लाई हूँ। हम मोहब्बत को आम करते हैं, हम मोहब्बत को आम करते हैं, हर किसी को एहतराम करते हैं, हर किसी को एहतराम करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें भी सलाम करते हैं।
1: No, I want the house.
2: Can we just be rational?
0: जो हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें भी सलाम करते हैं। वह पलकते, वह पलक झपकते गुजर जाता है, वह पलक झपकते गुजर जाता है, हम जब उनसे कलाम करते हैं। उनका अंदाज ऐसा जानलेवा है, उनका अंदाज ऐसा जानलेवा है, वो एक नजर से गुल

उनका दिल ना जीत सके, अभी तक उनका दिल ना जीत सके। हर रोज एक खत उनका नाम करते हैं। चलो आपको लेकर चलते हैं फिर से एक सुंदर सा गीत है, चलो मिलकर और श्रवण करें।

लवारिस रे अलम लवारिस से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत खुद अमिताभ बच्चन ने अपने आवाज से हमको सुनाई है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहते हैं फूल खुशबू, फूल खुशबू और चमन की बात करो, फूल खुशबू और चमन की बात करो, कुछ प्यार की मोहब्बत अमन की बात करो। रोज करते हो तुम बातें, रोज करते हो तुम बातें इधर उधर की, आज मिले आज मिलकर हाले दिल की बात करो, आज मिलकर हाले दिल की बात करो। चलते चलते कदम कहाँ तलक ले जाएगा, चलते चलते कदम कहाँ तलक ले जाए, एक पग चिन्हो आज प्यार की बात करो। सदियों से छुपी है कसक इन आँखों में, सदियों से छुपी है कसक इन आँखों में, आज आँखों में छुपे आंसू की बात करो। बहुत फासले लिए हैं अब तक, बहुत बहुत फासले बढ़ा लिया है अब तक, ऐ सनम अब हम दोनों एक मिलन की बात करें।

0: हाँ हाँ लैला मैं लैला।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी
0: फिल्म का नाम कुर्बानी, जाने पहचाने फिल्म और ये नाम भी ना कुर्बानी फिल्म का नाम। तेरी याद हर लम्हा हम उन्हें याद करते रहे, हर लम्हा हम उन्हें याद करते रहे, उनकी याद में मर मर के जीते रहे, उनकी याद में मर मर के जीते रहे, अश्क आंखों से हमारे बहते रहे, हम अश्कों के जाम पीते रहे, मोहब्बत रुसवा हुई जमाने में, मोहब्बत रुसवा हुई जमाने में, हम बस उनके नाम लेकर ही जीते रहे। लब खामोश थे आंखों ने हाले दिल कहा, हम बस उनके नाम लेकर, हम बस उनके नाम लेकर ही जीते रहे। तेरी याद
1: mom.com से

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है किशोर दाजी की आवाज में। उनको मेरी मोहब्बत प्यारी लगी है, उनको मेरी मोहब्बत प्यारी लगी है, दुनिया को मेरी कलम प्यारी लगी है। हमने क्या लिखा है खुदा जाने, दुनिया को मेरे लिखा, दुनिया को मेरे लिखी हर बात प्यारी।

The Evergreen, Evergreen, मुकेश जी की आवाज में दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा। नेखन तीन नेखन सेस्तक में हमने झूठ कहा, नेखन तीन सेफन सेस्तक में ये सुंदर सा गीत फिल्म दिल ने पुकारा में गाया गया है मुकेश जी की आवाज में। मेरी हर दुआ में शामिल तुम होने लगे, मेरी हर दुआ में शामिल तुम होने लगे, मेरी उदासी में खुशियों तुम बनने लगे। हवा से बुझते दिए की तरह

कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है कि प्यार नशा बन जाता है, तो कोई कहता है कि प्यार सजा बन जाता है। पर मेरे प्यारे, प्यार करो अगर सच्चे दिल से, प्यार करो अगर सच्चे दिल से, तो प्यार जीने की बहुत बहुत वजह बन जाता है।

जी मेरे सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश कर दिया गया है। ये अभी हाल ही अपलोड किया गया है, इसलिए आपको अभी मैं नहीं बताऊंगी कि किसका गीत आप सुन रहे। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर से बता देना। जिंदगी में दो चीज खास होती है, जिंदगी में दो चीज खास होती है जिसे आप इतने खास होते हैं और यहाँ पर फाउनिस्तानी रेडियो से आप जुड़े हैं तो आप वाकई में बहुत खास हैं। इवेंट खून भी सुंदर। जिंदगी में दो चीज खास होती है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता।

हाँ हाँ रफी जी के गाई हुई ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया जाता है पेश हो रहा है।

0: अवश्य अवश्य, यहाँ से हम आपके लिए ये गीत जरूर से अभी चलाएंगे, पर ये जरूर कहना चाहती हूँ, मेन हार्ट इज बद्रुफ दोर यो अफवी सखैत, मेन हार्ट इज बद्रुफ दोर यो अफवी सखैत, मार एक कैक एरनार उत ओम ये ते ओंतमुतन, एर इज गीन वोंट मार एर इज अन गफूल फान पैन, हेट फूल्ड अस ऑफ ये een stukje van mijn hart bent. Het voelt alsof je een stukje van mijn hart bent en hebt.
1: Meteen een soort luxueus gevoel.

नहीं नहीं नहीं नहीं दगा तो देना ठीक नहीं है, तो दगा नहीं देंगे। देर लगता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने पन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है।

खूबसूरत गीत, खूबसूरत गीत और इतनी मधुर आवाज में द एनख एख्त, द एनख एख्त। जी हाँ, आपने ठीक कहा है, द एनख एख्त मैं कहती हूँ और आपने फोन लगाकर और बता भी दिया है। द एनख एख्त शहीद वागित हुसैन जी, जो लेजेंड। ये सब गीत अभी मार्च के 13 मार्च 2025 में अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, इसी कारण ये गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है द एनख एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

क्या होता है हम नहीं जानते, जिंदगी को हम अपना नहीं मानते, गम इतने मिले कि एहसास नहीं होता, गम इतने मिले कि एहसास नहीं होता, कोई हमें प्यार करे अब, कोई हमें प्यार करे अब, विश्वास नहीं होता।

0: Basic Fit presenteert
1: शहीद वागित हुसैन जी की आवाज में,
2: सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में, और वो भी बहुत ही कठिन।
1: ना ये नहीं, बल्कि शहीद वागित हुसैन जी की आवाज में यहाँ से हमने सुने आपके लिए पेश किया गया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि माना बहुत परेशान करते हैं, माना कि बहुत परेशान करते हैं हम आपको, लेकिन प्यार भी तो हद से ज्यादा भी करते हैं ना आपको।

सुंदर सा ये सुंदर सा नगमा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण जी की आवाज़ में। और फिल्म का नाम हम आपसे बता दें, फिल्म का नाम साथी। साथी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए उदित नारायण, और देखे तो कविता कृष्णमूर्ति जी के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। लाइव प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है 2005 में, ये सुंदर सा गीत पिक्चराइज किया गया है।

अवश्य अवश्य गालो मुस्कुरालो मेरे प्यारे सुनने वालों और महफिल महफिल अवश्य सजा लो। कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर, द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर फ्रॉम सक्सेस इज मूवी लक मार दिस सेल ऑफ द स्टेप ब्रेंग यनार द ग्रोथ होगता।

ore किया। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम। हाँ हाँ और क्या अलका याग्निक जी, और देखे तो अभिजीत अभिजीत भट्टाचार्य ने सुना दी ये सुंदर सा गीत जो आपके लिए चुनकर और लाई हूँ सुनाने के लिए प्लेलिस्ट पर। तो बहुत से ऐसे हसीन मधुर गीत आपके लिए सेलेक्ट करके लाई हूँ। हाँ ये सब गीत तो पहले से तैयारियाँ करना पड़ता है और काम भी आसान हो जाता है। कहते हैं कि मोती फेरन द बोस कप ऑफर सक्सेस, डोर सेटिंग्स फॉर मोहन, डोर सेटिंग्स फॉर मोहन, सक्सेस वर्ड बहाल डोर दगेने दी सेल्फ इन मोइलेके टाइडन नीत ओपगेवन। हरकेंट यू सेल्फ दारिन? ऑब्स्टाकल्स अस कंसर्न, ऑब्स्टाकल्स अस कंसर्न, hindernissen zijn geen reden om te stoppen. No, no. Hindernissen zijn geen reden om te stoppen, maar een teken om vooruit te gaan. Stille inspanning, werk in stilte hard, werk in stilte hard. Jouw succes zal vanzelf geluid maken.

उदित नारायण जी की आवाज में, चेहरा तुम्हारा दिल में जिस दिन से उतर गया, हाँ तो ख्याल ही ख्याल आपका आता है, और क्या करे ये बेचारा दिल।

जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, हमें नहीं आता अपना दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और फिर से सो जाते हैं।

वाह, दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा गीत रफी जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम आप अवश्य जानना चाहते होंगे। फिल्म का नाम शोला और शबनम। धर्मेंद्र जी इसमें अपना कार्यकाल कलाकार इसमें दिखाई है। The handsome guy, third man.

ये भी कहा है कि जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जिंदगी में आप कितनी बार हार, जिंदगी में आप कितने बार हारे या कोई, ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप कितने बार हारे हुए ये मायने नहीं रखता। Het maakt niet uit hoe vaak je in het leven verliest. Want je bent geboren om te winnen. Ja, je bent gewoon geboren om te winnen.

Jitsingjiko programme Shamil Karliya Gaya Hai Jagjit Singh ki ye jo zindagi hai ha ha ab ye zindagi jo hai ise humko deal karna chahiye ise inhi mein humo safar karna chahiye kyunki ye vastra nahi hai mere pyare dosto ye vastra nahi hai ki aaj utar do kal pehen lo no कपड़ा हम पल भर में बदल लेते हैं बल्कि ये शरीर इसे हमें लापुकर करके फिर आगे बढ़ना है यानी कि लापू करना इसका मतलब ये है अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है स्पेशलिस्ट है जो शरीर को चंगा बनाने में हाँ पढ़े हुए हैं तो शरीर को अच्छा करके हम आगे बढ़ते ही जाते हैं तो ये जो जिंदगी है इसे हमें दोनों हाथ से और हर एक पल हंस कर और बिताना चाहिए क्या समझे ओए दोस्त ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देते उन्हें तजुर्बे बहुत देती है गलत तो नहीं थे हम पर खुद को सही साबित नहीं कर पाए यादों का कितना हसीन एहसास है तेरी यादों का कितना हसीन एहसास है लगता है जैसे तू हर वक्त मेरे पास है

कृति आकृति मेहरा और अनूप जलोता ये दोनों ये सुंदर सा भजन हमको सुना दी है, प्रोग्राम में हमने यहाँ शामिल कर ली है।

भी ऐसा प्यार हुआ तो भी ऐसा इंसान से हुआ जिसे मिलना बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो लोग किस्मत में नहीं होते। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। आपके लिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

0: रफ़ी जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जिंदगी क्या है। वाह वाह, सुनने के काबिल, सुनने के लायक, आपके लिए यहाँ से और पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं।

दोस्तों, जब कोई सोचता है कि वह बहुत अमीर, ताकतवर, शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति पागल और अहंकारी है। चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति और रंग का क्यों ना हो। मित्रों, इसका मतलब अक्सर ये भी होता है कि वो व्यक्ति सही रास्ते से भटक गया है और अज्ञानता में चला गया है, और इसका परिणाम हमेशा आज या कल एक बड़ी हार है। और ये इस दुनिया में हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है मित्रों, चाहे वो किसी भी पद या क्षमता में क्यों ना हो। ये आप मत भूलें, क्योंकि जो कुछ भी है आपके पास वो क्षण भंगुर है, थोड़ी समय के लिए है। जब तू मरेगा तो सब चीज छोड़ कर जाएगा। आप तो देखते हैं रोज ना, तो आप ही बचेंगे, आप ही लेकर जाएंगे, नहीं तो सोच विचार बदलो। जो कुछ है आपके पास उसका आनंद उठाओ, हो सके तो दूसरों को भी आनंद लेने दो, दूसरों को भी खुश करो। इसी का नाम जीवन है। जीवन का नाम है परिवर्तन। अपने जीवन में परिवर्तन लाया करो मित्रों।

मित्रों, ये घटना हजारों वर्षों से चली आ रही है और हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इस झूठी शक्ति और लालच ने मनुष्य को अपना वश में कर लिया है। वो अपनी प्रकृति, आदतों और गुणों को भूल गया है, जिससे कि राक्षसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। लोग केवल अपना और अपने लोगों का हित देखते हैं, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से निर्दोष लोग उनके ये अहंकार के कारण बर्बाद हो गए हैं और वे उन तथा कथित शक्तियों से प्रभावित है। मित्रों, इसीलिए अपने पद का, अपने पावर का, अपने धन पे या कुछ भी हो उस पे घमंड मत करना, मत करना। लोगों से मिल के रहो, ये ही अच्छा कर्म है, यही आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। अन्यथा आप वहीं रह जाएंगे जहां आप, समझ लीजिए, समझ लीजिए।

दोस्तों, इसी तरह से बहुत से बुरे लोग इस दुनिया में सत्ता में रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपना कोई सामान नहीं ले गया है, कुछ भी नहीं ले गया है। फिर मूर्ख व्यक्ति, आपके मरने के बाद क्या तुम अपने साथ कुछ ले जाओगे? तुम मूर्ख विचारक स्वार्थी हो, इसीलिए अच्छे बनो, अच्छे बनो और अपने वादे निभाओ। जो वादा किया है ना, उसे निभाओ। वादा आपने भगवान को, भगवान के नाम लेकर किया है, हैं? तो वादा निभाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद तुम्हें आम तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, आप मर जाओगे। मित्रों, इसके बारे में जरा सोचो, सोचो, हैं? ना जितना न कुनुआ लंबे हुई तक सोचो, और दूर सोच, भविष्य आगे में सोच, का हुई सोचना नहीं है। देखो दुनिया में, आपने रोज देखा है, रोज देखते हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग गए। बहुत महान लोग, बहुत बुरे लोग सब अइले गइले। तो आप रह जाओगे, अपने सामान पर कुंडली मार के बैठोगे? नहीं नहीं मित्रों, नहीं, तू भी जाएगा।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद

बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं, और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे है, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

क्यों में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अग्रीड सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने यह संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इतिहास कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास यानी कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज, ऐ मेरे दोस्त, तो हर रोज सुख होगा।

केस गोलाई के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती है।

सुहानी चांदनी रात। राम नारायण शिवराम जी के आवास में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है, जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बदनसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बदनसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण शिव राम जी के आवास में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है

0: बहुत खूब मुकेश चोलाई जी की आवाज में हमने श्रवण की है माई तेरी चुनरिया। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटे कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है ना मंच पर बुलाया जाता है। बस आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द मेरा बेटा। उसने नहीं मांगी पहचान ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की हर रोज एक नई कोशिश करता है। जब हमें थकान होती थी तो वो हमें थाम लेता था लेकिन खुद कभी थमता नहीं, क्योंकि उसके सामने में हम होते थे। वो पिता है ना कुछ कहता है ना जताता है। मगर उसकी चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

रेनी राम नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है। मुकेश जी की आवाज में कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण शिवराम के आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ, अवश्य ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

वाकई में जिंदगी ख्वाब है। हमको सुना दी एक बार फिर राम नारायण शिवराम यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ, जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी, यही लेन है यही देन है, यही स्वर्ग है यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

रियाज अहमद अली के निर्देश में। मेरे प्यारे सुनने वालों, बुद्धि भक्ति बुद्धि से होती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं।

हाँ, आपके लिए पेश किया गया है रिमिक्स हनुमान चालीसा। सदा स्वस्थ रहने के 12 जरूरी नियम। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो जरूर से आप इसे सुने और सुनकर इसे प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारे, ये अपने आप का फायदा होगा। सदा स्वस्थ रहने के 12 जरूरी यानी कुछ जरूरी नियम, जैसे पहला, खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्र आसन में बैठना। रात के सोने से 30 मिनट पहले दूध पिए अगर आपको एलर्जी नहीं हो तो। रात में दही ना खाए। अंतर होता है दूध में और दही में। तो कहते हैं कि रात को सोने से 30 मिनट पहले दूध पिए और रात में दही ना खाए। रात में फल खाने से बचे। रात में फल खाने से बचे। नमक, हाँ जी, नमक और चीनी जो बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर सुनिए, नमक और चीनी कम खाए। भोजन के बाद एक

तले भुनी चीजें कम खाए, तले भुजे चीजें कम खाए, यानी कि तले यानी कि छनवा जैसे बारा फलौड़ी ये सब चीजें कम खाए। एंड बपाल द ओली सोर द दातमुती ओगदान फरमेदन, bepaalde soort olie kunt u vermijden en ook meelsoorten kunt u vermijden. Dat is ook niet goed voor het gezondheid. En wat wel belangrijk is, roodse soep te helneki adete dale. Elke ochtend of de hele dag ergens dat u een moment kunt krijgen om te gaan wandelen, een beetje lopen, is helemaal goed voor uw gezondheid. और एक बात और है कि मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना ना खाए। हमारा आदत तो एक जैसे से हो गए है कि टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए खाना खाते वक्त, पर ये अलाउड नहीं है। यानी कि मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना ना खाए।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के यहाँ पर आपके लिए पेश किया गया है। भोजन सूत्र, भोजन सूत्र। वाह वाह करते हुए जीने के लिए, वाह वाह करते हुए जीने के लिए, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। रोटी को आधा कर सब्जी को दुगना, रोटी को आधा कर सब्जी को दुगना, पानी को तिगुना करे हंसना चौगुना करे। कम खाए स्वास्थ्य पाए उम्र बढ़ाए, ज्यादा खाए रोग पाए और जल्दी। वाह वाह करते हुए जीने के लिए, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी और बार बार खाए।

Shiu DJ Remix. पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र का जन्म वरम वर्ड एंड सॉन्ग खबर इन अखसेन. पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है. पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है. पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है. पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है. लेकिन अगर आप पर पिछले जन्म का कर्ज नहीं है तो बेटा नहीं बेटी पैदा होगी और कन्यादान करने पर आपको महापुण्य मिलेगा. कन्यादान करने पर आपको महापुण्य मिलता है. यही वजह होता है कि हमारे घर में पुत्र और पुत्री क्यों जन्म लेता है.

कभी कभी जो हमारे साथ हो रहा होता है वो उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ समझ आता है कि शायद ये भी अच्छे के लिए ही हुआ, ये अच्छे के लिए ही हुआ था। जिंदगी की हर चोट, हर मोड़, हर रुकावट किसी बड़ी भलाई का रास्ता खोल रही होती है। उस पल में सब्र, उस पल सब्र और यकीन बनाए रखना ही असली ताकत होता है।

ओम शब्द द उर्कलांक ओम बस्तात ऐ द्री वर्धन ओम बस्तात ऐ द्री वर्धन नामलग आ यू एम ओम हेट एर्स्ट वर्ड आ कॉम्ट ऐ द केल हेट एर्स्ट वर्ड आ फॉर ओम कॉम्ट ऐ द केल द ट्वेदे वर्ड इज यू एन हैव बट्रेकिंग ऑफ हेट हार्ट सेंट्रम Het derde woord is M. Dat trilt en het navelcentrum beïnvloedt. Het chanten van OM heeft invloed op meerdere centra in uw lichaam en verwijdert bovendien negativiteit uit uw lichaam.

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नजारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखे तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्जों की जरूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। हाँ भाई, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं आ कहीं दूर चले जाए हम। फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस कुमार में हूँ, कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है, अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूं तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा। अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से कर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश की है। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। निकम्मा किया इस दिल ने, फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

शान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शर्ली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलिया,

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलिया, हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करें।

0: कि एक बरसाती में रहने वाला।
1: और ये सॉन्ग थी दोस्तों
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

फिल्म क्रांति का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आप लोग को हमने सुना दिया है। गदर एक मूवी था जो लोग को बहुत पसंद थे और गदर तू भी आ गया है, लेकिन ये सॉन्ग जो है वो है गदर एम का सॉन्ग है।

और आया हूँ आया दिल का लुटेरा रुस्तख ने वर्षाइक फंदा आखमें से द्राये एने या खुद दत मुद ओक अंकेर जी कुन तो दोस्त तो हम चलते हैं और ये है अंजना जोन 1969 का जिसमें राजेंद्र कुमार बबीता ने काम किया है।

एन रिम झिम से गीत सामने गाए और राजेंद्र कुमार बबीता का कुछ हम आप सॉन्ग सुनाएंगे जिस फिल्म में काम किए हैं। आप एक और सुना जाए।

और दिल है तो मानता नहीं है दोस्तों, और ये एक दिल है तो वो क्यों मानेंगे। जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो मांगते हैं देखने को, सुनने को, देखने को, चाहने को, छूने को। ये दिल ऐसे ही है दोस्तों।

हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 3652 2.

अलहिदा सॉन्ग हम सुनाएंगे और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है इमिग्रेशन के या इमिग्रेशन नहीं जितने लोग आए हैं और ये गीत को आपको हम सुनाते आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में है चाहे जोन आई संदेश में है लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों ऑन द स्पॉट यू कैन से आई एम बोर्न इन नीदरलैंड यू कैन से या आई बीन फ्रॉम हियर आई बीन फ्रॉम देयर मगर ऑर्स्प्रोंगलिक हील फॉर मेंस से आई बीन फ्रॉम इंडिया नी या नो मे फॉर अदर्स वेल एंड देयर मग यू सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन मेंस सो गात इट टोग यू मग इट सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन तो सुरिनामी जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों आओ एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की ये सॉन्ग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओस कलाकार या सुरिनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मीन्स एंड लेट्स वे इवन गाँ लुस्टरा इट इज हील मूवी मैट वॉइस ऑफ न वीरेश उदित राम निशा मदारन और अहमद अली सुरेंद्र सिताल फरीज बरसाती एंड यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गीत को ये सब गाए थे मैट ऑल्स ड्रॉप इन द राउंड चटनी मसाला लगा कर राउ सुना जाए

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खिलावन इस ओन से टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मोर यूनिवर्स फॉर ओन से सरनामी हैव अ सॉन्ग। लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खिलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein hi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दरहाख के रवीन बलदेव जी हैं। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दतमुत ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और बेंसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, agar je kuch apna khun mein hai, apna shareer mein hai, to ye sab geet jo hai, to aap ko jhakjor dete hai ki hamara desh Suriname to apna hai desh hai, jahan pe hamara janam bhumi hua hai, lekin sab log ko wo feeling nahi hai, lekin jitne log ke aap ko feeling hai, to hum chalte hai एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सूरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yanniki, Guru dat kala sing bhi ek Surinam ka aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था। तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के।

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जी का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपने स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदर्स दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दे सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सचियानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना

ये दोस्तों मूवी के नाम थी शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या, भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगती हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो, सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना।
1: पर्दा हटा दो जरा मुख।

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो वाहन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shook Kerwal on the beat.
0: And beat.

मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन, और आप हैं मेरे साथ फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आता हूं एक प्रोग्राम। आई एम श्योर आप उसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप कार में हों, चाहे आप ऑफिस में हों, जहां पे भी हों, बस यही उम्मीद रहती है कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं और सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, दिल कनेक्शन यानी कि दिलों को दिलों से कनेक्ट करने की एक शुरुआत। तो आपका प्रोग्राम है, आप जो इसमें चाहें, जो सॉन्ग आपको पसंद हो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आपका वो सॉन्ग यहाँ पे प्ले करना पसंद करूँगा। तो आप बेझिझक बिंदास मुझ तक एक अपना छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, मैसेज कहाँ पे भेजेंगे, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोनों ही पेजेस को पहुँचने के लिए आपको सिर्फ एक ही आईडी यूज करनी है, जो है आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने मैसेजेस भेजिए, बताइए मुझे आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।

हूं एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप हैं अपने दोस्त अपने होस्ट पवन के साथ। प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम के लिए आपकी कुछ फरमाइशें हैं, अगर आप कोई स्पेशल सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो मैं आपके नाम से प्ले करूं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है कि आप फेसबुक पे जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पर मुझे सर्च कीजिए आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। मेरे पेज पर जाकर मुझे एक मैसेज कीजिए और बताइए वो कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपका इस प्रोग्राम के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे इसी फेसबुक पेज पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आप आरजे पवन ऑफिशियल को सर्च कीजिए, मेरे पेज पे जाइए और मुझे अपना मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, जब तक मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं, तब तक सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

बहुन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने दोस्त अपने होस्ट पवन के साथ। प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम के लिए आपकी कुछ फरमाइशें हैं, अगर आप कोई स्पेशल सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो मैं आपके नाम से प्ले करूं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है कि आप फेसबुक पे जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पर मुझे सर्च कीजिए आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। मेरे पेज पर जाकर मुझे एक मैसेज कीजिए और बताइए वो कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपका इस प्रोग्राम के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे इसी फेसबुक पेज पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आप आरजे पवन ऑफिशियल को सर्च कीजिए, मेरे पेज पे जाइए और मुझे अपना मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, जब तक मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं, तब तक सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

दोस्तों, फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने होस्ट अपने दोस्त पवन के साथ और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में आप सुनेंगे कुछ खबरें, साथ ही साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, रेडियो फाहून को ये मौका देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस के फोन नंबर पर जो है 07036220707 07 3622077, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@fahunfm.nl, या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि है न्यूटन स्ट्रात 25 2562 KC में। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद मैं आपके पास जल्द ही वापस आता हूं। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर।

पावन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन शर्मा। तो मेरे साथ सुनते रहिए ये प्रोग्राम जो मैं लेके आया हूं खास आपके लिए, ओनली ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन, एंड मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे पवन।

फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन। दोस्तों, प्रोग्राम है दिल कनेक्शन। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ और मैं आपको सुनवा रहा हूं यहाँ पर कुछ शानदार सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए अपने आप को एंटरटेन।

मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन, और आप हैं मेरे साथ फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आता हूं एक प्रोग्राम। आई एम श्योर आप उसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप कार में हों, चाहे आप ऑफिस में हों, जहां पे भी हों। बस यही उम्मीद रहती है कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं और सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, दिल कनेक्शन यानी कि दिलों को दिलों से कनेक्ट करने की एक शुरुआत। तो आपका प्रोग्राम है, आप जो इसमें चाहें, जो सॉन्ग आपको पसंद हो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आपका वो सॉन्ग यहाँ पे प्ले करना पसंद करूँगा। तो आप बेझिझक बिंदास मुझ तक एक अपना छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, मैसेज कहाँ पे भेजेंगे? उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोनों ही पेजेस को पहुँचने के लिए आपको सिर्फ एक ही आईडी यूज करनी है, जो है आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने मैसेजेस भेजिए, बताइए मुझे आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे।

दोस्तों, फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने होस्ट अपने दोस्त पवन के साथ और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, रेडियो फाहून को ये मौका देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस के फोन नंबर पर जो है 07036220777, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@fahunfm.nl, या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि है न्यूटन स्ट्रैट 25 2562 KC दनहाग में।

दोस्तों, इस शानदार सुपर हिट सॉन्ग के बाद आप वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी दिन, और तब तक के लिए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार की देखभाल करें, और सबसे ज़रूरी होता है ज़िंदगी में खुश रहना। तो दोस्तों, कीप लाफिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप लिसनिंग म्यूज़िक एंड कीप कनेक्टेड विद फाहून FM हिंदुस्तानी रेडियो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं बेस्ट मनोरंजन। और यही सिलसिला मैं जारी रखूंगा अपने आने वाले प्रोग्राम में। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए आपका ये होस्ट, आपका ये दोस्त आपसे कहता है बाय बाय।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेक्टवी 159 बाय ऑटो फॉर हीर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नजारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखे तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। ख्वाब है भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाएं हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं। अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी सलामी से। आप सुनेंगे, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे बहुत जताते हो चाह हमसे, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। प्रेम दीवाने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते एक बहुत सुंदर गीत है। ये आपको सुनाने वाले हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक। चलिए मिलकर सुनते हैं।

फ्रॉम द मूवी प्रेम दीवाने से अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत जिंदाबाद, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक मिरकर आपको सुनाने वाले थे। गोरे तन से सरकता जाए, फ्रॉम द मूवी अखियों से गोली मारे। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

सोनू निगम, अलका याग्निक और संजीवनी मिलकर के आपको सुनाने वाले थे मेरा प्यार का रस सरा चखना वही मखना।

अभी आप सुन रहे थे मेरे प्यार का रस सरा चखना ओए मखना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आई लव यू बोल डाल।

अभी आप सुन रहे थे आई लव यू बोल डाल फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं मेरे सपनों का वो राजा

अभी आप सुन रहे थे मेरे सपनों का वो राजकुमार फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से हमने पेश किए हैं। दोस्ताना है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे देसी गर्ल।

फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश की है सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ फ्रॉम द मूवी जुदाई से हम पेश करते हैं।

मुफी जुदाई से हमने पेश किए हैं हाँ मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तीसमर खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माय नेम इज़ शीला, शीला की जवानी।

0: रीता।
1: अभी आप सुन रहे थे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। और शीला के जवानी के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दबंग, तो इसे हमने पेश किया है मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

गा दीवाने झूम के माइत मुकेश की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैत मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं ओ मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर सस्त का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया। हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफिन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साज पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

0: कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफी साहब की आवाज में ये गीत हम आपको सुनाए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्ज में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वाडेकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाह यार ने के एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं।

So गाने से पता चलता है स्तोखबत फ्रॉम प्लन, लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर, बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश किए तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस की तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है। ये नहीं करेंगे, चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परिचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चूने जो चून घी है, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं। वह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नाग पंचमी में से नेगतिन तुई से ही पिंदा

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और तब लिया द प्लस रेडियो एनाटिक इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड 24 घंटे रोजाना लगातार जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइशों जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो तो देखना कमाल ही कमाल हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डिवाइस सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, जरूरी खबरें हो या तो फरमाइशें हो या अपने व्यापारी के बारे में, हम लोग कमर्शियल बनवा कर और जितने बार आप चाहे यारो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कांतोर यूर ऑप 07-2-13-65-68-90। तो जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाउन हिंदुस्तानी।
1: लाइव वनुट ओनसे हाईटेक स्टूडियो इन देन हाग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फन द ऑर्डर अलगमीने रेक्सप्रैक्टिक हीरोंडर फालें बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाकें बेस्टुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासीजाकें ओमगांग्सरेगलिंगें ऑउडरशप एंड एरकेनिंग जेउग्डरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेउग्डबेस्केर्मिंग्सरेक्ट ओंडर टुसेग्स्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070-365-2247.

टून के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ये भीड़ रफीसा है बवाशा जी, कारवां में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं कार्यक्रम, आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपन एयर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आप सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तुली जी है लता जी फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश की। VVV.FM.NL पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊँ ये गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में से, सॉरी कटी पतंग में से निकाल रहे हैं।

इस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए हैं आरडी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकादार गीत है।

ये भिकार वहाँ में से निकाले हैं। आरती बर्मन के साज पर आशा जी आपको सुनाए, चलो ये सुनते हैं लता जी और एवरग्रीन की।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी। ये गीत आपको सुनाया गया, फिल्म है लाखों में एक, और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में पेश हुआ फिर गैम्बलर में से निकाल कर निकली सैफ तक का ये गीत एस देव बर्मन के साज पर हम आपको सुनाएंगे।

जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर ये टाइटल सॉन्ग नेगतीन द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं, आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं। जी हाँ, मैती मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगति एन सस्त 1961 का ये गीत।

मैं तो मुकेश और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, वह है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंदे सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। आशा जी और रफी

क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। रफ़ी साहब आशा जी आपको सुनाए कुर्बानी में से निकाले हैं, इंडिवर के लिखी हुई गीत, कल्याण जी आनंद जी के साज पर चला ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको आशा जी और भूपेंद्र की, जी हाँ, बप्पी लहरी के साज पर ये है।

वो प्यार के लिए जिससे हमने छोड़ दी है दुनिया, भूपेंद्र और आशा जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफी साहब और लता जी की आवाज़ में मदन मोहन के साज पर।

कितना प्यारा वादा है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में पेश हुआ ये शानदार गीत फिल्म कारवां में से निकाल कर।

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नेगेटिव फिरेंसी शस्त्र का जी यानी कि फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाए गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है, तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साज पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेगेट 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह, क्या ड्यूएट था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

तू चेगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुना ये फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेस हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शास्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँझ पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के है।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साथ पर माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज़ है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज़ पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली निकने से का ये गीत हमने एक बार कहा था पता नहीं कब लेकिन एक बार फिर कह देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज़ दी है 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं। लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में रेशम की डोरी, इसका सारे भी बनता है। जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए तो आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, लता जी के साथ फिल्म ससुराल में से निकाल कर। जब ये फिल्म पहली बार चला सूरीनाम में, बहुत दिन की बात है, तो लोगों डर गए थे कि क्या ससुराल में ऐसा भी होता है, तो कैसा होता है सुन लीजिए।

अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता। शंकर जय किशन के साथ पर ये गीत पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी तत्पर है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितने बार रोका जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि महबूब नहीं सुनता या महबूबा नहीं सुनती है। बहरहाल आपको सुनाते हैं ये गीत। क्या हुआ पता नहीं मेरा सीडी को क्या हुआ। अच्छा चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है, इस तरह से है।

वाह क्या बात है, ये गीत हमने चलाया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, ये सुदास और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए जो गीत हम चलाने वाले थे इससे पहले वही गीत हम फिर ढूंढ के और निकाले हैं और आपको अभी अब सुना रहे हैं। रफ़ी साहब आशा जी की आवाज़ में, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, वह क्या बात है। मेरा सनम नहीं थी इन फाइव इन सस्त ओपन नैयर के सास पर

रफ़ी साहब और आयशा जी मिल के आपको सुनाएं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करें इस तरह से, तो पेश करें मदन मोहन, मदन मोहन के साज पर निगति एन सैफन तक का ये गीत एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुन लीजिएगा इस तरह से। सोचिए मदन मोहन और ऐसा गीत, जी हाँ ये भी हो सकता है।

0: हो।
1: सिमटी सी शर्माई सी आपको सुनाया गया। हमने एक गीत पेश की मदन मोहन के साज पर, निकिति एन सीफिन का ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है आशा जी की। आशा जी की ये गीत आप सुनिए। उस ज़माने में जब ये गीत बना तो उस ज़माने में लोग कहते थे मुजरा है, मुजरा, मुजरा से बदल कर बार का गाना हो गया, बार का गाना कैबरे हो गया, कैबरे के बाद आजकल आइटम सॉन्ग हो गया, नाम बदल गया, गाना वही रहा, लय वही रही और हाँ थोड़ी बहुत साज बदल गया और शब्द बदल गई, लेकिन आजकल क्या कहा जा रहा है, आइटम सॉन्ग। उस ज़माने में मुजरा कहा जाता था। चलो सुनते हैं।

आशा जी, वाह क्या बात है आशा जी, आपको सुनाए हैं ये उन दिनों के गाने जो हम आप सुन रहे थे और इस पर डांस भी किए होंगे, लुत्फ उठाए होंगे हमने पेश की आशा जी की आवाज़ में। तो चलिए, पक्का मुजरा ये है जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, तो ये पक्का मुजरा है।

वाह क्या बात है, हमार कहाँ मानो राजा जी फिल्म है का नाम है दुल्हन एक रात की, ये भी है लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फिल्म हमने नहीं देखे। आपने देखे होंगे तो बता सकते हैं, हमने फिल्म नहीं देखे। अगर गाना तो सुने हैं और भी गाने हैं जहाँ तक मेरा ख्याल में, एक दिन ये फिल्म लेकर देखेंगे। उषा मंगेशकर और आशा भोसले दो बहनें मिलके आपको सुनाई है ये मुजरा वाला गीत। तो वही मुजरा और वही कैबरे डांस और वही वगैरह वगैरह नाम बदलते बदलते बदलते बदलते अब हो गया है आइटम सॉन्ग।

0: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।
1: वो भी होता है रावण से लंका मांगना। बहरहाल ये आइटम सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। चलिए इसी समय का आइटम सॉन्ग हम आपको एक और सुनाते हैं, और वो ये है।

घर में अरे परदेसिया आओ पधारो, पेश परदेसिया फिल्म कलंक में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए। ये था भी एक आइटम सॉन्ग। जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर, थोड़ी सी समय और है तो हम आपको एक और आइटम सॉन्ग सुनाते हैं। जी नहीं, आइटम सॉन्ग से पहले सुन लीजिए मुजरा। चलिए हम आपको मुजरा सुनाते हैं। उससे पहले आइटम सॉन्ग था ये और अगला गीत है एक मुजरा। चलो सुनते हैं।

वह आशा जी की आवाज में आपको सुनाया गया ये मुजरा उन दिनों का। चलिए घड़ी पर देखूं तो जी हाँ हाँ जी VVV.FM पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए वो जी हाँ चलिए वो सिलसिला हम थोड़ी सा और जारी कर रहे हैं, आपको एक आइटम सॉन्ग सुना रहे हैं। तो लीजिए ये आइटम सॉन्ग इस तरह से हुआ, क्या बात है। धूम मचाले धूम।

धूम मचा ले धूम, सुनिधि चौहान और साथी मिलके आपको सुनाए हैं ये गीत हमने चलाए। ये भी एक आइटम सॉन्ग है। चलिए एक आखिरी आइटम सॉन्ग आपको और सुनाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम थोड़ा बदलेंगे। लीजिए ये आइटम सॉन्ग, क्या ख्याल है?